0: any person who releases a lit sky lantern might even commit an offense. Please put safety first and refrain from flying a sky lantern. It's my life,
1: it's now or never. Metroplus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
2: Life is for the living. You have to make the most of it.
1: On Family.
2: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
1: Life with drugs. No life at all.
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
4: Namaste, sat sri akal, salam, kidda ho ji, sare vadiya, appa ji, bahut vadiya. Aaj hai 25 September 2026 aur hamare paas hai kuch takriban 1, 2, 3, 4, 5. 5 announcements. और आज मिड ऑटम फेस्टिवल भी है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी टीम की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल ठीक है तो शुरू करते हैं जी हमारा पहला अनाउंसमेंट दिस इज एप्लीकेशन फॉर प्राइमरी वन एडमिशन फॉर स्कूल एंट्री इन सितंबर 2027 प्राइमरी वन एडमिशन 2027 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है अगर आपका बच्चा 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले पैदा हुआ है और सितंबर 2027 में गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी वन ज्वाइन करेगा तो वो प्राइमरी वन एडमिशन 2027 में पार्टिसिपेट कर सकता है ये प्रोसेस इस साल सितंबर से शुरू होगा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इन्फॉर्मेशन लीफलेट 1 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेंगे फॉर्म आप अपने बच्चे के किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से ले सकते हो Home Affairs Inquiry Centers, Regional Education Offices या Education Bureau के School Places Allocation Section से ले सकते हो Different Languages में Information Notes Education Bureau की POA Website से मिल जाएगी Completed Application Form सारे Supporting Documents के साथ 21 से 25 सितंबर 2026 के बीच School Hours में अपने Choice के एक Government या Aided Primary School में Submit करो Discretionary place के लिए जो parents primary one admission e-platform users हैं और अपना account IM Smart Plus से link किया है वो 17 से 25 सितंबर 2026 तक online भी apply कर सकते हैं latest updates के लिए education bureau के press releases और POA website check कर सकते हो कोई सवाल हो तो education bureau के school places allocation section पर call कीजिए number है 2832-7700 बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर यह है ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहो कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दो जैसे ब्रेस्ट में लंप साइज या शेप में फर्क निप्पल का अंदर की तरफ खींच जाना स्किन या टेक्सचर बदल जाना अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ रेगुलर एक्सरसाइज करो हेल्दी वेट और वेस्ट रखो अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो ज्यादा जानकारी के लिए आप www.cancer.gov.hk/breastcancer पर जा सकते हैं अपना ख्याल रखो ऑलराइट बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो अपनी जॉब की जरूरतों के बारे में डिस्कस करो और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन देंगे पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश या चाइनीज में है अगर आप चाइनीज या इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यूज कीजिए फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जी अपना अगला

0: अनाउंसमेंट, काम शुरू करने से पहले अपना स्टेटस क्लियरली समझ लो, आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। कई चीजें मैटर करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट राइट्स और बेनिफिट्स। स्टेटस सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं। अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहा है तो आप मना कर सकते हो। अगर आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लेंट हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2815-2200। ऑलराइट, आखिरी अनाउंसमेंट है हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है, बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए। सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहो। बाहर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करो, आउटडोर एक्टिविटी सुबह या शाम को प्लान करो, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छांव में आराम करो। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें। बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें। यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचो, SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाओ, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छांव में रहो। अगर चक्कर आए, सर दर्द हो, उल्टी जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो। गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो। ज्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जाएं। ऑलराइट गाइस, आते हैं जी हमारी प्लेलिस्ट पर, जिन जिन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है। ऑलराइट, ब्रूनो रिक्वेस्टेड मुखालिफत बाय नोमी जट। अनोनिमस ने रिक्वेस्ट किया है पछताओगे अरिजीत सिंह। सनी ने रिक्वेस्ट किया है सेल्फ ट्रेन बाय खान बैनी। अफाई ने रिक्वेस्ट किया है जैकपॉट बाय चीमा वाई। सोनिया ने रिक्वेस्ट किया है जमा बाय निंजा। अनम ने रिक्वेस्ट किया है ऑल गुड बाय खान बैनी। साइम ने रिक्वेस्ट किया है बारह बंदे बाय वरिंदर बरार। अमृतपाल ने रिक्वेस्ट किया है क्लॉक इन बाय निजर। अंकित ने रिक्वेस्ट किया है लैरिया बाय सुरजीत पुल्लर। गोरिया ने रिक्वेस्ट किया है काले जेलेबाज बाय काका। यासीन ने रिक्वेस्ट किया है वन कॉल अवे बाय अर्जेंटिलो एंड जेसी बी। अनोनमस ने रिक्वेस्ट किया है जी नहीं लगता बाय जैस्मिन सैंडलस। रूबी ने रिक्वेस्ट किया है चाल बाय डॉक्टर ज़ूस। राहत फतेह अली खान और आगे जो दो गाने आई थिंक पिछले हफ्ते के गाने रिपीट है, वन इज नो कंट्रोल बाय जॉर्डन संधू एंड डू और डाई बाय श्री ब्रा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर मी। वी विल बी लाइव नेक्स्ट वीक तो ऑन फेसबुक, सो यू कैन स्टार्ट सेंडिंग योर सॉन्ग रिक्वेस्ट्स। तब तक के लिए जी, चिल करो, टेंशन ना लो, ते चढ़दी कला जा रहो। रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।
1: या नोमी जट्ट, आ जावे जमालपुरिया।

0: डा
1: अमोर से थोड़ा अलग है चाहे गाने दुनिया ने बहुत दिए हैं इस गाने में तुमने औरता की तरिया तने बज्जी नहीं मिलेगी ये खास मर्दों के लिए है।